नष्टेयाता नएता सोवाने आय आय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया शेक्या।

को पावा के पचे चेता आम चेवे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या ताला वहा ये ये हे ये या हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा के कौन मो के कोई चाओ।